0: la casa tenía trabajo. Y es por eso tan precario que el Estado solo está en uso de la
1: empresa. उसके पैसों के मात्र 3,000 के पता मिलने से यो पार्टी आउटे करता के लिए जैसे कि कार्य नहीं होता पार्टी से देना स्वाद नहीं होता तो आइए मात्र को विभिन्न काम बस्ते आरो बैठे

साथ-साथ जब मैं घटना हूँ दीदी में प्रदर्शन अर्थात यात्रा और काम करा की अत्य ज्यादा घूम सकते विश्वसनीय और आधिकारिक जानकारी को मत विश्वास करोस अपना कार्य सुरक्षित रखोस पुलिस चिंता लगेगा तुरंत नजदीक को सुरक्षा करने जानकारी दिखोस आपत्कालीन अवस्था में कहाँ कल करनी नेपाल प्रहरी एक सुंदर सुंदर वार्ड एघारह जिला मानव देश विकल्प

स्वास्थ्य कार्य बर्दिया से करना प्रगत चम्मच जिला को 82% किशोरी मौत दर बताते पूर्णता आर्थिक वर्ष या घटना 80% स्वास्थ्य कार्य आर्थिक वर्ष 2082-83 में जिला का 8 बालिका में 8 विद्यालय में पढ़ना 1968 किशोरी का रगत परीक्षण कर 1617 जन में रगत अस्पताधिक पड़ने को अस्पताल प्रताप मेला किशोरी में से 820 जन में सामान्य 765 जन में मध्यम 32 जन में रकला अस्पताल प्रताधिक पड़क स्वास्थ्य कार्य जमीन का कला अस्पताल प्रताप मेला किशोरी को कंठ परीक्षण में उपचार प्रभाग स्वास्थ्य संस्था में पठाने वाला सामान्य व मध्यम अस्पताल प्रताप मेला किशोरी को कंठ पर आयरन शक्ति तीन प्रसंग उसका ओ संतुलित खाना खाए सुझाव दे स्वास्थ्य कार्य बढ़ते हैं सूचना अधिकारी पत्र कुमारी श्रेष्ठ पत्रिकवासी किशोरी फुकन नियमित रूप में आयरन चक्की होना कार्यक्रम संचालन से डॉक्टर कुटा का समस्या पर अपेक्षा अनुसार घटनी सैकड़ हो स्वास्थ्य कार्य का प्रमुख उमेश गौतम के अनुसार जिला का कुछ विद्यालय का 96% सम्म किशोरी में रक्तल पदा करीब विद्यालय में 98% किशोरी में रक्तल पदा एक पलक समय नेपाल में किशोरी में रक्तल पदा का औसत दर करीब 49% लक्षण दी गौतम प्रख्या का अवस्था गंभीर लक्षण आपका शेष मजा तो पाले बिंदु से।

0: भारत देश के युद्ध को अभियान रोकथाम में समाधान रोजगारी पढ़ाई और कमाई को लोग दिखाई मानस ने देश विधान का प्रसार प्रसार करने का कठोर दिन प्रदर्शन सरकार यात्रा द्वारा काम करा की कतई जाने मिल सकते सुस्ती और आधिकारिक जानकारी को मत विश्वास करोस अपना कार्य सुरक्षित रखोस और पुलिस शंका लगे तुरंत नजीकी को सुरक्षा करने जानकारी दिखोस आपत्कालीन अवस्था में कहाँ चल रहा है नेपाल प्रति एक सुंदर सुंदर हवा एघारह तेरह मानव देश विधान वृद्ध को विरोध एघारह सतहत्तर तथा बाल हेल्पलाइन दस नौ आठ में कॉल करोस
1: नागरिक सुरक्षित समाज मानव देश विधान विरुद्ध सेवा के साथ
0: हमी मिलकर मात्र रोक सकता मानव देश विधान को जान ताकि यूनेस्को द्वारा प्लान इंटरनेशनल नेपाल को साझेदारी जिला प्रशासन कार्यालय

0: मतलब नियमित रूप में आयरन कैल्शियम आयरन सुविधाएं स्वस्थ होता है सुरक्षित परिवार
1: रेडियो द्वारा जारी संदेश।

तो अगर तुम लोग उसे तुमने क्यों नहीं खाई? मानो देखिए हम के निकाल तो भेजा तो फिर तू उस पर सारा खेत खाना ला गया हम के पूरा दिन चल रहे

ने सुनता है ना तुरंत नदी को सुरक्षा करने में जानकारी दी थी। आपत्कालीन अवस्था में कहां कर रहे थे नेपाल प्रहित एक सुंदर सुना हुआ तेरा डेरा मानव व्यक्ति को युद्ध प्रतिरोध तेरा सतर्कता था भारत हेल्पलाइन 10-9-8 में

0: सहकारी तथा कृषि फार्म प्रमाण पत्र प्रतिनिधि समूह सहकारी को निर्णय प्रतिनिधि अति विपन्न मुक्त कमैया मुक्त बंगाली तथा दलदली कृषक
1: समस्या

0: था, कुछ करेंगे तो सब कुछ लोग दिखाना नहीं मिला था कि क्या होगी ये होगा बहुत अच्छी प्रतिक्रिया बताई
1: दिखा चाहिए समय में कभी तक कैसे